मीडियम वीप 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 16वीं तिथि। तदनुसार 7 जुलाई सन 2026 सुबह के 5:59 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सस के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र

0: महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वीप 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मातृभूमि की माटी चंदन, आओ तिलक लगाएं, इस माटी में जन्म मिला यह सोच के हम इतराएं।

दुर्गा परम सनातनी जग की सृजनहार आदि भवानी अंबिका सृष्टि का आधार। सुमरण करते हैं माता रानी का इस भजन के माध्यम से।

हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। आइए परमात्मा का ध्यान करें इस भजन के माध्यम से।

इंसान माया के वशीभूत है। माया को दूर करने के लिए प्राणी को परमात्मा का सुमिरन करना होगा, तभी उसका उद्धार है।

आर्त व्यक्ति ही भगवान की शरण में जाते हैं। आर्त की पुकार ही आरती है। आरती अपने इष्ट देवता की प्रसन्नता के लिए की जाती है। पूजा में भूलवश या प्रमादवश कोई त्रुटि रह जाती है तो आरती करने से उसकी पूर्ति हो जाती है।

श्री हनुमान जी की आरती के साथ ही आज की वंदना संपन्न हुई। इसमें आज आपने समूह स्वर में देशगान, माता रानी का भजन नरेंद्र चंचल के स्वर में, श्री हरि भजन अनुराधा पौडवाल के स्वर में, भक्ति रचना मन्ना डे से और कार्यक्रम के अंत में श्री हनुमान जी की आरती महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में सुनी। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद यानी 6:35 पर आप सुनेंगे खेती किसानी कार्यक्रम। सुबह 6:40 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार होंगी वाणी जयराम। संगीत संयोजन होगा सतीश भाटिया का। चिंतन का प्रसारण होगा सुबह 6:50 पर। सुबह 7:20 पर बुंदेली सुगंध के अंतर्गत सुनिए बुंदेली काव्य पाठ। कवि होंगे आशाराम साहू। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा सुबह 7:30 पर। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित कार्तिक कुमार से सितार वादन। राग होगा अहीर भैरव और पूर्वी धुन। सुबह 9:00 लोकरंग कार्यक्रम में कलाकार होंगे अनुपम जैन। 9:30 पर सुनिए एक ही गीतकार कार्यक्रम के अंतर्गत राजेंद्र कृष्ण के लिखे हुए कुछ फिल्मी गीत। 10:00 भोपाल से हम रैली करेंगे जिले की चिट्ठी। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे पत्रिका कार्यक्रम समय साक्षी। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। दिन में 1:00 सुनिए महिला कार्यक्रम। इसमें महिलाएं सुनेंगी कहानी पुनर्विवाह। कहानीकार होंगी सोनल शुक्ला। इसके अलावा सुनिए व्यंजन विधियां। सुबह 10:35 पर हम आपको सुनवाएंगे श्रोताओं के सोशल मीडिया संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। संध्या 5:00 युववाणी कार्यक्रम में युवा श्रोता सुनेंगे भेंट वार्ता। आला गायक सुखराज कुशवाहा से रविन्द्र कुमार प्रजापति की बातचीत। साथ ही होगी रोजगार सूचना। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा संध्या 5:40 पर। शाम 6:00 भोपाल से रैली करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। शाम 6:30 पर सुनिए बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। कलाकार होंगे चंद्रभूषण पाठक। संध्या 7:20 पर घरनी कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। साथ ही सुनिए भेंट वार्ता ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में स्व सहायता समूह विषय पर डॉक्टर सोमदत्त त्रिपाठी से रविन्द्र कुमार प्रजापति की बातचीत। और आज की सीख का विषय होगा तुला तुला से बैर है कुभे ले गई चोट कारक राश कर की करे लंका डारी टोर। रात 8:00 भोपाल से हम रैली करेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर सुनिए फिल्म संगीत। आज रात दिल्ली से हम रैली करेंगे रात 9:00

0: 15 मिनट पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम, 9:30 पर मनी टॉक और रात्रि 9:45 पर दिल्ली से ही रिले करेंगे कार्यक्रम मंथन। रात 10 बजे सुनिएगा श्रोताओं की ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है खेती किसानी कार्यक्रम।
1: समझदार व्यक्ति सज्जनता का व्यवहार करता है और
2: पंच भैया, आज हम अपन का जानकारी दे रहे हैं एजेटू वेक्टर जैव उर्वरक के बारे में। कौन सा भैया? एजेटू वेक्टर जैव उर्वरक, जो भी एक ऐसा उर्वरक है भैया कि जो स्वतंत्र जीवी नत्रजन का स्थिरीकरण कर देते है, यानी कि खुद ही वातावरण में मौजूद जो नत्रजन है उखा पौधा की पत्तियों के माध्यम से अपने पौधा में जो गांठे बनाऊ तो उमे स्थिर करके फिर जमीन में पहुंचा देते है। तो ई की एक और विशेषता है भैया कि ई के 1 ग्राम जैव उर्वरक का अगर अपन लें तो ई में 10 करोड़ जीवाणु होते। कितने भैया? 1 ग्राम में 10 करोड़ जीवाणु। तो जो बहुत ही अच्छा और तेज उर्वरक है जैव उर्वरक, कोनो भी फसल बस दलहनी भरना हुए दलहनी फसल खान छोड़ के कोनो भी फसल में ई जैव उर्वरक एजेटो वेक्टर को अपन उपयोग कर सकते हैं। ई किराने वैज्ञानिक भैया ने जो बताओ है कि एजेटो वेक्टर जो जो जैव उर्वरक है ई की विशेषता जा है कि भैया 10 से लेकर 20% तक तो पैदावार बढ़ जात और जो न अपने फल हैं या दाने हैं उनको जो प्राकृतिक स्वाद है वो बिल्कुल ज्यों को त्यों बनो रात। जो निया के अपन ने जैसे मान लो कचु किसान पंच रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयन को प्रयोग करत है तो उसे फलन को जो प्राकृतिक स्वाद है वो कछु अलग ही सो लगन लगत। अकेले भैया अगर अपन कछु एजेटो वेक्टर जैव उर्वरक को प्रयोग करें तो प्राकृतिक स्वाद अपन जाकोता मिले। ई को सबसे बड़ा फायदा एक और है कि ई के प्रयोग से 20% से लेकर 30% नाइट्रोजन नत्रजन जो उनका होते ई की भैया बचत करी जा सकते है, मतलब उनको कम उपयोग अपन करने पड़े। ई के प्रयोग करवे से भैया जो अपनो बीज है उनकी अंकुरण क्षमता बढ़ जात और ज्यादातर बीज इनको जमा हो जात और अपनी जो फसल फल के रूप में अपन को मिलत है वे स्वस्थ मिले, जड़न को विकास अच्छे हो गए और पौधा में बढ़वार भी अच्छी हो जाए। इन जो फसलन में अपन एजेटो वेक्टर उर्वरक को प्रयोग कर रहे उक फसल में भूमि से फास्फोरस को ज्यादा उपयोग कर लेती जिसे उके भैया कल्ले भी जैसे गेहूं में करें अपन धान में करें अपन तो जो फसल में कल्ला फूटत वे बहुत ज्यादा मात्रा में फूटन लगत। जब कल्ले ज्यादा फूटे तो उत्पादन भी ज्यादा हो गए। जैव उर्वरकन के जीवाणु बीमारी फैलावे वाले जो रोगाणु होत उनका भैया नष्ट कर देते जिसे की अपनी फसल में बीमारियों से बचाव हुए और अपने पौधा के अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ा देते भैया। जो जो एजेटो वेक्टर उर्वरक है वो अपने पौधा के अंदर जाके रोग प्रतिरोधी क्षमता मतलब बीमारियों से लड़ावे की क्षमता बढ़ा देते भैया। ऐसे जैव उर्वरक को प्रयोग करने से जो जड़े हैं तना हैं उनको खूब विकास हो जिसे पौधा में तेज हवा ज्यादा पानी सोखने की क्षमता और अच्छा उत्पादन अच्छा फूल बढ़ जाते है। जे जो उर्वरक है जैव उर्वरक जे सस्ते आउत है अकेले बस बीज में अपन उपचारित करके इखा प्रयोग करने हैं। इमें जो सावधानी है बेबी यही है भैया के उखन जब अपन ई जैव उर्वरक से उपचारित करें तो अपन का 10-15 मिनट तक उखा छायरे में सुखा लेने है कि नहीं, धूप में नहीं जाने, ज्यादा गर्म स्थान पे नहीं रखने, नहीं तो ई के जो जीवाणु होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। इमें जब अपन का बीज उपचारित करने हैं तो उके लाने विधि वही है के अपनो पैकेट जोन में के एजेक्टो वेक्टर जो उर्वरक अपन ले हो वो पैकेट का खोलें और अपने बीज में थोड़ा सा पानी छिड़क के और उके ऊपर डाल के 50 ग्राम गुड़ के संगे अच्छी प्रकार से उनको घोल तैयार करें। अच्छी बढ़िया साफ जांगा में जहाँ बीज डाले उके ऊपर से इको छिड़काव कर देवे, फिर बीज का अच्छी तरह से उल्टे पलटे जिसे के जोन भी बीज अपन बह रहे उके ऊपर ई एजेक्टो वेक्टर जैव उर्वरक की अच्छी परत जम जाए तो निश्चित है कि अपन का फसल में अच्छा उत्पादन जरूर मिले।
0: किसान भाइयों के लिए अभी खेती किसानी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

देवाधिदेव महादेव तथा पार्वती का धाम पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, जिस पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो सभी ऋतुओं में समान रूप से हरा भरा रहता है, शीतल स्निग्ध छाया देता है, जहां मंद सुगंधित वायु बहती रहती है। ये स्थान शिवजी का विश्राम स्थल है। इसी वृक्ष की शीतल छाया में शिव इस मुद्रा में बैठे हैं, जैसे स्वयं शांत रस मूर्तिमान हो उठा हो। सुअवसर पाकर पार्वती वहां आती हैं। आदर सत्कार की भंगिमा के साथ शिवजी ने उन्हें अपनी बाईं ओर आसीन किया। पार्वती को अनायास अपने पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी की प्रशस्ति करते हुए उन्होंने श्री रघुनाथ की कथा सुनाने का अनुरोध किया।

0: भोजन था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: समझदार व्यक्ति सज्जनता का व्यवहार करता है और मूर्ख दुर्जनता का। कोई व्यक्ति जितना सज्जन होगा, समझ लीजिए वो उतना ही बुद्धिमान, योग्य एवं उदार होगा। जो व्यक्ति जितना मूर्ख होगा, उतना ही वो ढीठ एवं दुष्ट होगा, क्योंकि मूर्खता से ही क्रूरता का जन्म होता है। यदि समझदार व्यक्ति सज्जनता का व्यवहार नहीं भी करेगा तो वो दुष्टता एवं भ्रष्टता तो कदापि नहीं कर सकता। संसार में जितने अत्याचारी, अन्यायी, क्रूर, आतंकी, व्यभिचारी, दुष्ट व्यक्ति अथवा शासक हुए, वे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मूर्ख थे, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति केवल अपनी ही धारणा को श्रेष्ठ मानता है, फिर परिणाम चाहे जो कुछ भी हो। ऐसे अनेक उदाहरण इतिहास में हैं। दुर्योधन ने एक बार मान लिया कि पांडवों का उसके राज्य में तनिक भी हिस्सा या अधिकार नहीं है, तो उसने पांडवों को ही समाप्त करने की अनेक कोशिशें की और दुष्टतापूर्ण कार्य कर डाले। इतना ही नहीं, अनेक सयानों के समझाने पर भी नहीं समझा। अपनी धारणाओं और मान्यताओं के कारण पांडवों के प्रति ईर्ष्यालु रहा। उसके साथ कुछ और मूर्ख भी आ मिले, जिन्होंने आग में घी का कार्य किया। परिणाम स्वरूप मूर्खतावश दुष्टता की सारी सीमाएं लांघ गया और महाभारत में बंधुओं सहित उसका दुर्दांत अंत हुआ। इसी प्रकार कंस भी बुद्धिहीन था, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की मूर्खतापूर्ण धारणा के कारण दुष्टता की पराकाष्ठा लांघ गया था। निर्दोष निरीह बच्चों की हत्या से लेकर अनेक कृत्य करते हुए भी सुखी न रह सका। मृत्यु के साथ सब कुछ खो दिया। इसी प्रकार रावण ने सीताहरण की मूर्खता विद्वान होने के बावजूद की, परिणामतः समूचे परिवार का नाश कर डाला। आज भी हमारे समाज में दुर्योधन, रावणों एवं कंस जैसे लोग विद्यमान हैं, जो अपनी मूर्खता के कारण घमंड, अहंकार से ग्रसित होकर चोरी, बेईमानी, डकैती, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। अपनी मूर्खता को छुपाने के लिए अथवा भयभीत होकर एक के बाद एक अत्याचार, अन्याय करते हैं, धन लूटते हैं और निरीह और मासूम लोगों की हत्याएं करते हैं। अंत में प्रकृति के अटूट नियम के अनुसार उनका दुखदायी अंत होता है। इसके विपरीत जो समझदार व्यक्ति अपने विवेक, दूरदर्शिता, परिणाम की परवाह करते हुए सचेत रहते हैं, वे सही दिशा में सही कदम उठाकर चलते हैं। आज आवश्यकता है ऐसे दिशाहीन भटके हुए लोगों को प्रेम पूर्वक समझाइश देकर सही राह पर लाने की। हम कभी भी ऐसे लोगों के विचारों को बढ़ावा न दें, बल्कि कुविचारों को सुविचारों में बदलें। धन की लालच में कोई भी मूर्खतापूर्ण कदम न उठाएं, जिससे स्वयं तथा समाज को लज्जित होना न पड़े तथा नुकसान न हो, क्योंकि इस संसार में अनैतिक कार्यों से धनवान होकर किसी ने अधिक दिनों तक सुख नहीं भोग पाया है। धन वैभव की लालच में जिन लोगों ने दूसरे को कष्ट दिया, दुख पहुंचाया, अन्याय, अत्याचार, हत्या आदि का कृत्य किया, उनकी आत्मा की हाय, पीड़ा, बद्दुआ सब कुछ एक न एक दिन जलाकर खाक कर देती है। उनकी आने वाली पीढ़ियों को इसका अभिशाप भुगतना पड़ता है। औरंगजेब ने अपने संबंधियों की हत्याएं कर साम्राज्य तो प्राप्त कर लिया, रावण ने सोने की लंका बना ली, पर परिणाम क्या हुआ यह सबसे छिपा नहीं है। इसीलिए अनैतिक तरीके से कमाए हुए धन से धनवान होने की अपेक्षा नेकी की कमाई हुई सहजता अधिक श्रेष्ठ है। आज भारत उतना धनवान देश नहीं है, लेकिन उसने अनैतिकता से किसी का राज्य अथवा धन हड़प नहीं किया। पंचशील का शांति संदेश का अभिपालन करते हुए सत्य, अहिंसा तथा वसुधैव कुटुंबकम को आदर्श माना। इसी कारण आज विश्व पटल पर भारत का नाम एवं काम गौरवपूर्ण है। व्यक्तिगत रूप में भी नागरिक सौहार्दपूर्ण रहते हुए सुकून से रह रहे हैं। किसी के पास भले ही धन न हो, परंतु उसके पास आध्यात्मिक सुख शांति, मानसिक एवं शारीरिक सुख तथा संतोष एवं सामाजिक सौहार्द अवश्य होता है। जबकि आततायी के पास दुख, क्लेश, भय, कुंठा और पीड़ा सदैव विद्यमान रहते हैं। जब तक वो ऐसे कृत्यों में संलग्न रहता है, दुखी एवं भयभीत रहता है। इसलिए बुद्धिमानी उसी में है कि हम धैर्य, संतोष, मेहनत एवं ईमानदारी से जीवन बसर करते हुए शक्तिशाली बनने का प्रयास करें, बुद्धिजीवी रहें, विवेकपूर्ण आचरण करें, किसी के बहकावे में आकर अपना संतुलन न खो बैठे। हम सबके पास बुद्धि के साथ साथ विवेक भी है, जो ईश्वर प्रदत्त है और एक ऐसा तोहफा है जिसे प्राप्त कर हम मनुष्य कहलाते हैं। अंतर्मन की आवाज हमें अनैतिक कार्यों से सावधान स्वतः कर देती है, जिसे सुनकर, पहचान कर, सत्य असत्य, अच्छे बुरे की परख कर सत्य धर्म एवं सद्मार्ग का चयन करें। कभी भी लालच, छल, दंभ, स्वार्थ एवं बहकावे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सदैव कुमार्ग को त्याग कर सद्मार्ग की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अपने लिए अपनी परिस्थितियों के निर्माता, नियोक्ता, उपभोक्ता हम

0: स्वयं ही होते हैं।
1: ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
2: हमारी पहली कविता
3: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः

0: चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाए, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीन देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉ जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी चार देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की तीन सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर दो दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही। फीफा फुटबॉल विश्वकप के राउंड ऑफ 16 में अमरीका के टेक्सास के डलास शहर में स्पेन के पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक और अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमरीका का सामना बेल्जियम से हो रहा है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. The two leaders will also

0: 7:10 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को मिलेगी मजबूती। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, उन्नत खेती और पशुपालन से बढ़ाएंगे किसानों की आमदनी। और मौसम विभाग के अनुसार आज 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। इससे भारत और इंडोनेशिया अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तैयार है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से समुद्री और आर्थिक संबंध सुदृढ़ होंगे और उभरते क्षेत्रों में सहयोग गहरा होगा। राजदूत ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के संबंध सकारात्मक दिशा में अग्रसर हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इस प्रवृत्ति को और बल देगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की पहल की घोषणा कर सकते हैं। इनमें रक्षा और समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश, खाद्य सुरक्षा और उर्वरक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिज, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि वे आगामी रथ यात्रा के लिए रेलवे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे ताकि सुचारू संचालन और श्रद्धालुओं की निर्बाध यात्रा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि रेलवे इस साल ओणम उत्सव के दौरान 100 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाएगा।
1: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओणम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जुड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: बेकिवाल समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों की आमदनी केवल एक फसल से नहीं बल्कि उन्नत खेती और पशुपालन से बढ़ेगी। इस बात को ध्यान में रखकर सरकार खेती के साथ साथ पशुपालन को विशेष बढ़ावा दे रही है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल ग्वालियर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्नत कृषि पर हुई संभागीय कार्यशाला में मौजूद किसानों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कार्यशाला में जैविक और प्राकृतिक खेती पर किसानों के अनुभव सुने। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। हम अगले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 राज्य बनाएंगे।

मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने कल भोपाल में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने दतिया विधानसभा उपचुनाव के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नामांकन का कार्य शुरू हो चुका है। 13 जुलाई नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी। 14 जुलाई को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 16 जुलाई को नाम निर्देशन पत्र की वापसी की तारीख है। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होगी। उन्होंने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करें। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा से कल मध्यप्रदेश संवर्ग 2025 बैच के चयनित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने पुलिस मुख्यालय में सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मकवाणा ने कहा कि प्रशिक्षण पूरी तन्मयता से प्राप्त करें ताकि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का उत्कृष्ट क्रियान्वयन कर सकें। उन्होंने 9 चयनित अधिकारियों से कहा कि प्रशासनिक सेवा केवल एक पद नहीं बल्कि जनता की सेवा का दायित्व है। उन्होंने अधिकारियों से ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और जन सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नए आपराधिक कानून, साइबर सुरक्षा, साइबर फ्रॉड, नारकोटिक्स और नशा मुक्ति जैसे विषय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा। विद्यार्थी और अभिभावक राज्य शिक्षा केंद्र के वेब पोर्टल www.rskmp.in पर परिणाम देख सकेंगे। इसके साथ ही इसी पोर्टल पर शिक्षक, संस्था प्रमुख अपनी शाला का विद्यार्थी वार परिणाम भी देख सकेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने संचालित शासकीय छात्रावासों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए विद्यार्थी अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इस वर्ष से प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की गई है। इसके लिए विभाग ने एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से विशेष हॉस्टल प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। प्रदेश में भारी बारिश का सिस्टम सक्रिय है, जिसके चलते पिछले 6 दिनों से राज्य के अधिकांश जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य में अब तक सामान्य से 1% बारिश कम हुई है, जबकि जून में यह 33% कम थी। अब तक भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में सामान्य से अधिक वर्षा हो रही है। देवास में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बारिश हुई है। जकार्ता में अंडर 23 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के दूसरे दिन आज 50 किलोग्राम भार वर्ग के एशियाई चैंपियन विश्वनाथ सुरेश ने उज्बेकिस्तान के अमीर बेग इस्माइलोव को हराकर भारत का शानदार प्रदर्शन जारी रखा। पुरुष वर्ग के 55 किलोग्राम भार वर्ग में गंगा ने मंगोलिया के अमगाला नबातर बुलगुंग को 5-0 से हराया। वहीं महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में तनु ने कोरिया की रेंगयोंग किम को 5-0 से पराजित किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय में कल विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पन्ना जिले में बीती रात हुई लगातार बारिश के चलते केन, मिनासन और पत्नी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। झाबुआ के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में एकलव्य योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हेतु 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रारंभ हो गई है। सतना जिले में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा लगभग 100 स्ट्रीट डॉग्स का एंटी रेबीज टीकाकरण किया गया। मंडला जिले की घोघरी तहसील में कल आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गुड इवनिंग डीटीएच ऑडियो चैनल साथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण और लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम
1: मीडियम वीप 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए बुंदेली सुगंध के अंतर्गत बुंदेली काव्य पाठ

हमारी दूसरी कविता को शीर्षक है एक पेड़ माँ के नाम। अपनों पर्यावरण बचाओ ने सब जांगा वृक्ष नए लगाओ ने, अपनों पर्यावरण बचाओ ने सब जांगा वृक्ष नए लगाओ ने, एक पेड़ हम लगाए अब माँ के नाम से, कोनऊ ना काम भलो जानो ई काम से, कोनऊ ना काम भलो जानो ई काम से, जीवन में अगर चैन चाओने सब जांगा वृक्ष नए लगाओने, हरो भर

लगावने, सब जांगा वृक्ष नहीं लगावने। जीविका वृक्ष हमें स्वच्छ हवा देते हैं, जीविका वृक्ष हमें

ने अब आशा राम हमें प्रगति कामनाओ ने अब आशा राम हमें प्रकृति हामनाओ ने पीड़न खा हमें अब रखाओ ने पीड़न खा हमें अब रखाओ ने सब जांगा वृक्ष नई लगाओ ने अपनो पर्यावरण बचाओ ने सब जांगा वृक्ष नई लगाओ ने सब जांगा वृक्ष नई लगाओ ने हमारी तीसरी कविता को शीर्षक है व्यायाम करना।

तन मन खा मिलत रात ही से विश्राम, तन मन खा मिलत रात ही से विश्राम, रोजाना जौन करत।

0: व्यायाम हमें सवई जने कात, करने व्यायाम हमें सवई जने कात। बात सही बता रहे हैं, बात सही बता रहे हैं हम आसाराम। रोजाना जौन करत बंध के व्यायाम, रोजाना जौन करत बंध के व्यायाम।
1: हमारी चौथी कविता को शीर्षक है बूढ़न की सेवा। बूढ़

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बुंदेली सुगंध के अंतर्गत बुंदेली काव्य पाठ। कवि थे आशाराम साहू। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। पेश कार्यक्रम फिल्म संगीत।

आप सुन रहे थे फिल्म पांचवी मंजिल का ये गीत। मधुर आवाज थी सुलक्षणा पंडित की, गीतकार थे पंडित मधुर और संगीत उषा खन्ना का। श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। इस फिल्म से आवाज है मुकेश की, गीतकार है शैलेंद्र, संगीत शंकर जयकिशन का। तो आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

0: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब?
1: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रमक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हो।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रही थी फिल्म मुद्दत का ये गीत। आवाजें थी आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की। गीतकार थे इंदिवर और संगीत था बप्पी लहरी का।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओ, तो अभी आप सुन रहे थे फिल्म नसीब अपना अपना। इस फिल्म का गीत आवाज थी शब्बीर कुमार की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का। और आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म प्यार करके देखो। इस फिल्म का गीत आवाजें हैं किशोर कुमार और साथियों की, गीतकार हैं इंदिवर और संगीत बप्पी लहरी साहब का है। तो आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

0: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं समाचार प्रभात, बस कुछ ही पलों में।
1: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के

0: अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम, मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
2: India and Indonesia are very close and strategic partners.
3: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
2: प्राइम मिनिस्टर्स विजिट विल रीइंफोर्स दैट ट्रेंड।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉ जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉ जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉ जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
4: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39

0: खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगे पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6वें स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्स फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की।

0: फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad. Warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals including 4 gold at under 20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain book place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi

मीडियम वीप 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित कार्तिक कुमार से सितार वादन। इनसे पहले सुनते हैं राग अहीर भैरव।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी छतरपुर से शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे पंडित कार्तिक कुमार से सितार वादन, राग था अहीर भैरव। और अब सुनते हैं पूर्वी धुन, कलाकार एक बार फिर पंडित कार्तिक कुमार।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित कार्तिक कुमार से सितार वादन। इसके अंतर्गत आप सुन रहे थे पूर्वी धुन। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोकरंग कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं अनुपम जैन। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं देवी गीत से।

0: आप सुन रहे थे देवी गीत, कलाकार थे अनुपम जैन।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी छतरपुर से लोकरंग कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं अनुपम जैन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये चौकड़िया।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे किसान गीत, कलाकार थे अनुपम जैन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये चेतावनी, कलाकार एक बार फिर अनुपम जैन।

बारहमासी गीत के साथ ही आज का लोकरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे अनुपम जैन। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए एक ही गीतकार कार्यक्रम के अंतर्गत राजेंद्र कृष्ण के लिखे हुए कुछ फिल्मी गीत। श्रोताओ, मैं हूं आपके साथ आपका मित्र संतोष ताम्रकार, एक ही गीतकार कार्यक्रम लेकर। श्रोताओ, महान गीतकार राजेंद्र कृष्ण का जन्म 6 जून 1919 को हुआ था। सिनेमा के सबसे सफल और समृद्ध गीतकार में से आप एक थे। उनका जन्म अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में स्थित जलालपुर जाटा, जो पाकिस्तान में है, यहां पर हुआ था। उन्होंने 1948 में महात्मा गांधी की शहादत पर अमर गीत सुनो सुनो ये दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी लिखकर घर घर में ख्याति प्राप्त कर ली थी। तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं इन्हीं का लिखा हुआ एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म जहां आरा से। आवाजें थी लता मंगेशकर और तलत महमूद की।

गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और मदन मोहन संगीतकार थे। श्रोताओं, राजेंद्र कृष्ण का पूरा नाम राजेंद्र कृष्ण दुग्गल था। शुरुआत में उन्होंने शिमला में नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी में क्लर्क के रूप में काम किया। बाद में वो मुंबई चले गए और अपने बेहतरीन गीतों व पटकथा लेखन से भारतीय फिल्म उद्योग में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उन्हें संगीतकार सी रामचंद्र के साथ उनकी सबसे सफल जोड़ी के रूप में जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं का लिखा हुआ एक और प्यारा संगीत।

श्रोताओं, ये मधुर आवाज थी मोहम्मद रफी साहब की। फिल्म का नाम था एक कली मुस्काई। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण जी ने, संगीत मदन मोहन का था। श्रोताओं, राजेंद्र कृष्ण जी ने कई फिल्मों में बहुत ही बेहतरीन गीत लिखे, जैसे फिल्म अलबेला, अनारकली, आशा नागिन और दो बदन जैसी कई सुपरहिट फिल्में, जिनके गीत आज भी गुनगुनाए जाते हैं, गाए जाते हैं और पसंद किए जाते हैं। श्रोताओं, किस्मत की हवा कभी नरम, शाम ढले खिड़की तले, ये अमर गीत आज भी अमर है। ये जिंदगी उसी की है जैसे कई गीत, ये समृद्ध लेखन का प्रमाण है राजेंद्र कृष्ण की लेखनी का। आइए सुनते हैं इन्हीं का लिखा हुआ एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, ये थे किशोर कुमार फिल्म मनमौजी में। संगीत था मदन मोहन साहब का और गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। श्रोताओ, राजेंद्र कृष्ण की प्रमुख उपलब्धियों में अगर गिना जाए तो आपने सी रामचंद्र, मदन मोहन, रोशन जैसे कई दिग्गज संगीतकारों के साथ मिलकर बेहतरीन काम किया। उनके लिखे हुए कुछ सबसे मशहूर गीत जैसे सुनो सुनो ये दुनिया वालों फिल्म दहेज का, धीरे से आजारी अखियन में फिल्म अलवेला और दिल धड़के नजर शरमाए फिल्म आशा। 1956 में आई फिल्म झांझर के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उनके जीवन और संगीत की अनंत कहानी है। आइए सुनते हैं इन्हीं का लिखा हुआ एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म खानदान का ये गीत। मधुर आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, संगीत रवि का और गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। श्रोताओं, इसके पहले जो आपने गीत सुना उस फिल्म का नाम था नई रोशनी, आवाज थी मोहम्मद रफी साहब की। इसी गीत के साथ ही एक ही गीतकार कार्यक्रम अब समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने मित्र संतोष ताम्रकार को। नमस्कार श्रोताओं, आज सुन रहे थे आप राजेंद्र कृष्ण की लिखी हुई कुछ फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। 10 बजने को हैं, चलते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की ओर और सुनते हैं जिले की चिट्ठी।

0: एमडीटीएच के ऑडियो चैनल सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। और लीजिए अब सुनिए छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश प्रजापति, वाचन स्वर दीपा सिंह। छिंदवाड़ा और नवगठित पांडुना जिले की आबो हवा में इन दिनों विकास, जागरूकता और सकारात्मक बदलाव की नई बयार बह रही है। खेतों में लहलहाती उम्मीदों से लेकर पर्यटन के नए क्षितिजों तक और युवाओं के भविष्य को संवारने से लेकर आम जनमानस की सुरक्षा तक जिले में बहुत कुछ खास हो रहा है। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति ने नई चादर ओढ़ ली है। छिंदवाड़ा और पांडुना जिले में वन विभाग द्वारा व्यापक पौधरोपण अभियान का शंखनाद कर दिया गया है। जिले के हरित आवरण को बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से इस वर्ष दोनों जिलों में कुल 22,55,000 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। छिंदवाड़ा के मुख्य वन रक्षक कमल अरोरा के अनुसार हाल ही में अतिक्रमण से मुक्त कराई गई वन भूमियों को पुनः हरा भरा करने के लिए 3,69,000 सागौन के रूट शूट चरणबद्ध तरीके से लगाए जाएंगे। मॉनसून की पहली बारिश के साथ शुरू हुआ यह महाअभियान जैव विविधता को समृद्ध करने की दिशा में एक मील का पत्थर है। जुनारदेव के वनग्राम कालीमाती में गायत्री परिवार के तत्वावधान में 1100 पौधे रोपे गए। यहां वन विभाग की भूमि पर पंचमटी, त्रिवेणी और 9 पौधों की नवग्रह वाटिका स्थापित की गई है। वहीं परासिया में एक अभिनव प्रयास किया जा रहा है। वीरान पहाड़ी पर हरियाली लगाने के लिए सीड बॉल, गोबर और मिट्टी की गोलियों का उपयोग हो रहा है। बारिश में भीगने के बाद इन गोलियों के भीतर मौजूद बीज आसानी से अंकुरित हो जाएंगे। पर्यावरण प्रेमी राजेंद्र बबुआ यादव ने शनिधाम समिति को ये सीड बॉल भेंट किए हैं, जो कोल इंडिया के पूर्व सीएमओ डॉ जयश्री राय द्वारा बेंगलुरु से मंगवाए गए थे। अब बात करते हैं माटी से जुड़े हमारे अन्नदाताओं की। कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत परासिया विकासखंड के ग्राम उमरेट के युवा प्रगतिशील किसान संदीप पवार ने वैज्ञानिक खेती की एक शानदार मिसाल पेश की है। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाकर हरी मिर्च, करेला और शिमला मिर्च का बंपर उत्पादन किया है। उन्होंने 11,50,000

50,000 रुपए की लागत लगाकर 24,75,000 रुपए की आय प्राप्त की है। उनका शुद्ध लाभ पूरे अंचल के किसानों के लिए एक नजीर बन गया है। दूसरी ओर मानसून की देरी से खरीफ फसलों की बोनी भले ही थोड़ी प्रभावित हुई है, लेकिन कभी पीला सोना कहे जाने वाले सोयाबीन का रकबा इस वर्ष बढ़कर 9,000 हेक्टेयर प्रस्तावित किया गया है। बारिश और जल संरक्षण की बात करें तो जलगंगा संवर्धन अभियान में छिंदवाड़ा ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। जिले ने अपने निर्धारित लक्ष्य का 132% हासिल करते हुए 64,000 से अधिक कार्य पूरे किए हैं। पांडुना जिले में भी इस अभियान का भव्य समापन जन भागीदारी के साथ हुआ। पांडुना के ग्राम पंचायत भवन तेगांव में जगन्नाथ नेत्रालय द्वारा एक निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 105 मरीजों की जांच की गई और 25 को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चुना गया। अब बात करते हैं पर्यटन की, जो इस क्षेत्र की नई पहचान बन रहा है। तामिया के पातालकोट की वादियां इस बार अगस्त माह में पहली बार 3 दिवसीय सावन महोत्सव के गवाह बनेगी। पर्यटकों को यहां सावन के विशेष झूले, बैलगाड़ी की सवारी और हस्तशिल्प प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। वल्चर प्वाइंट, चीड़ प्वाइंट और छोटा महादेव में ट्रैकिंग के जरिए रोमांच का तड़का भी लगेगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने ग्रामीण पर्यटन के लिए पांडुना के भूमा और जामसावली गांव का चयन किया है, जहां होम स्टे विकसित कर युवाओं को रोजगार मिलेगा। जिले के जामसावले स्थित प्रसिद्ध श्री हनुमान मंदिर हनुमान लोक में इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच द्वारा सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर समीक्षा की गई, ताकि श्रद्धालु सुव्यवस्थित दर्शन कर सकें। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नकुलनाथ की पहल पर 12वीं और स्नातक में 60% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी अब महानगरों में एमसीए, बीटेक और एलएलबी जैसी उच्च शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। रोजगार के मोर्चे पर छिंदवाड़ा आईटीआई के एक प्लेसमेंट ड्राइव में 139 प्रशिक्षणार्थियों को, जिनमें 52 पुरुष और 87 महिलाओं को रोजगार के लिए चुना गया है। इसके अलावा युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए पांडुना के पीएम कॉलेज ऑफ एक्सलेंस में तनाव प्रबंधन और आत्महत्या की रोकथाम पर एक अहम कार्यशाला आयोजित की गई। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश प्रजापति का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का।
1: मीडियम वीप 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है पत्रिका कार्यक्रम समय साक्षी। प्रस्तुति है रविंद्र कुमार प्रजापति की।
2: समय

0: समय साक्षी।
1: आज के समय साक्षी कार्यक्रम में चर्चा के विषय हैं पंडित चक्रधर शर्मा गुलेरी जयंती एवं दूसरी चर्चा है बुजुर्गों में मानसिक स्वास्थ्य और अकेलेपन की समस्या। होंगे विविध समाचार और फिल्मी गीत। आप सभी श्रोताओं को सुरेंद्र सिंह का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के उस महान लेखक की जिन्होंने केवल कुछ ही रचनाएं लिखी लेकिन अपने लेखन से वे अमर हो गए। हम बात कर रहे हैं पंडित चक्रधर शर्मा गुलेरी की। पंडित चक्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को जयपुर में हुआ था। वे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पाली और प्राकृतिक जैसी अनेक भाषाओं के विद्वान थे। उनके पिता पंडित शिवराम शर्मा भी प्रसिद्ध विद्वान थे, इसलिए बचपन से ही उन्हें साहित्य और संस्कृति का समृद्ध वातावरण मिला। दोस्तों, गुलेरी जी केवल कहानीकार ही नहीं बल्कि इतिहासकार, भाषाविद, शोधकर्ता और उत्कृष्ट शिक्षक भी थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति, इतिहास और भाषा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी लेखन शैली सरल, प्रभावशाली और संवेदनशील थी। यदि उनकी साहित्यिक उपलब्धियों की बात करें तो उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था, ये कहानी हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। प्रेम, त्याग, कर्तव्य और मानवीय संवेदनाओं से भरपूर ये कहानी आज भी पाठकों के हृदय को छू लेती है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित इस कहानी में एक सैनिक के वचन और उसके बलिदान को

अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि गुलेरी जी ने बहुत कम कहानियां लिखी, लेकिन उनकी प्रत्येक रचना साहित्य की अनमोल धरोहर बन गई। उनकी भाषा में सहजता है, कथानक में गहराई है और पात्रों में जीवन की सच्चाई दिखाई देती है। पंडित चक्रधर शर्मा गुलेरी ने शिक्षा और शोध के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया। वे विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से जुड़े रहे और भारतीय संस्कृति के अध्ययन को नई दिशा दी। उनके लेखों में इतिहास, पुरातत्व और भाषा विज्ञान का गहरा ज्ञान दिखाई देता है। 12 सितंबर 1922 को वे पंच तत्व में विलीन हो गए, लेकिन उनका साहित्य आज भी जीवित है। उनकी रचनाएं हमें ये सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम केवल पाने का नहीं बल्कि निभाने और त्याग करने का नाम है। आज जब हम हिंदी कहानी के विकास की बात करते हैं तो पंडित चक्रधर शर्मा गुलेरी का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि किसी लेखक की महानता उसकी रचनाओं की संख्या से नहीं बल्कि उनकी गुणवत्ता और प्रभाव से आंकी जाती है। तो श्रोताओं, पंडित चक्रधर शर्मा गुलेरी का जीवन और साहित्य हमें ज्ञान, संवेदना और मानवीय मूल्यों का संदेश देता है। इसलिए उनकी रचनाओं को पढ़ें और हिंदी साहित्य की इस अमूल्य धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। जब भी हिंदी साहित्य की बातें होंगी, गुलेरी जी का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा। उनकी रचनाएं युवा कवियों के लिए प्रेरणा है। उनको याद करते हुए हम ये गीत गुनगुना सकते हैं।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे यादगार फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। अनजान के गीत को संगीतबद्ध किया था बप्पी लहरी ने। श्रोता बुजुर्ग हमारे परिवार और समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उनके अनुभव, संस्कार और जीवन की सीख हमें सही दिशा दिखाते हैं, इसलिए उनके प्रति सम्मान, प्रेम और संवेदनशीलता रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है। आइए इसी चर्चा को विस्तार से समझते हैं श्रीमती प्रियंका खरे की वार्ता में। विषय है बुजुर्गों के प्रति हमारे दायित्व।
1: एक पेड़ जितना ज्यादा बड़ा होता है वह उतना ही अधिक झुका हुआ होता है, यानी वह उतना ही विनम्र और दूसरों को फल देने वाला होता है। यही बात समाज के उस वर्ग के साथ भी लागू होती है जिसे आज की तथाकथित युवा तथा उच्च शिक्षा प्राप्त पीढ़ी बूढ़ा कहकर वृद्धाश्रम में छोड़ देती है। वो लोग भूल जाते हैं कि अनुभव के सहारे ही दुनिया भर में बुजुर्ग लोगों ने अपनी अलग अलग दुनिया बना रखी है। जिस घर को बनाने में एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, वृद्ध होने के बाद उसे उसी घर में एक तुच्छ वस्तु समझ लिया जाता है। बड़े बूढ़ों के साथ यह व्यवहार देखकर लगता है कि जैसे हमारे संस्कार ही मर गए हैं। बुजुर्गों के साथ होने वाले अन्याय के पीछे एक मुख्य वजह सामाजिक प्रतिष्ठा मानी जाती है। आज के समाज में मध्यम वर्ग में भी वृद्धों के प्रति स्नेह की भावना कम हो गई है। वृद्ध जीवन को पश्चाताप का पर्याय न बनने दें। वृद्धावस्था जीवन का अनिवार्य सत्य है। जो आज युवा है वह कल बूढ़ा भी होगा ही, लेकिन समस्या की शुरुआत तब होती है जब युवा पीढ़ी अपने बुजुर्गों को उपेक्षा की निगाह से देखने लगती है और उन्हें अपने बुढ़ापे और अकेलेपन से लड़ने के लिए असहाय छोड़ देती है। आज वृद्धों को अकेलापन, परिवार के सदस्यों द्वारा उपेक्षा, तिरस्कार, तियां, घर से निकाले जाने का भय या एक छत की तलाश में इधर उधर भटकने का गम हरदम सताता रहता है। जिस तरह डूबते सूरज को कोई नमन नहीं करता, उसी तरह अनुभव की गठरी बने बुजुर्ग को भी कोई महत्व नहीं देता। वृद्धों को लेकर जो गंभीर समस्याएं आज पैदा हुई हैं, वह अचानक ही नहीं हुई बल्कि उपभोक्तावादी संस्कृति तथा महानगरीय अधुनता बोध के तहत बदलते सामाजिक मूल्यों, नई पीढ़ी की सोच में परिवर्तन आने, महंगाई के बढ़ने और व्यक्ति के अपने बच्चों और पत्नी तक सीमित हो जाने की प्रवृत्ति के कारण बड़े बूढ़ों के लिए अनेक समस्याएं आ खड़ी हुई हैं। दरअसल नई जीवन शैली और नए मूल बूढ़ों को समाज में कोई जगह नहीं देते बल्कि उन्हें उनकी जगह से भी विस्थापित करते हैं। आज का समय सेवानिवृत्त होते ही उस व्यक्ति को नकार देता है। आज जहां अधिकांश परिवारों में भाइयों के मध्य इस बात को लेकर विवाद होता है कि वृद्ध माता पिता का बोझ कौन उठाए, वहीं बहुत से

0: मामलों में बेटे बेटियां धन संपत्ति के रहते माता पिता की सेवा का भाव दिखाते हैं, पर जमीन जायदाद की रजिस्ट्री तथा वसीयत नामा संपन्न होते ही उनकी नज़र बदल जाती है। बड़े शहरों में परिवार से उपेक्षित होने पर बूढ़े बुजुर्गों को ओल्ड होम्स में शरण मिल जाती है, पर छोटे कस्बों और गांवों में तो ठुकराने तरसाने सताए जाने पर भी आजीवन घुट घुट कर जीने की मजबूरी होती है। ऐसे में मध्यम वर्गीय परिवार के वृद्धों के लिए जीवन का उत्तरार्ध पहाड़ बन जाता है। वर्किंग बहुओं के ताने बच्चों को टहलाने घुमाने की जिम्मेदारी की फिक्र में प्रायः जहां पुरुष वृद्धों की सुबह शाम खप जाती है, वहीं महिला वृद्ध एक नौकरानी से अधिक हैसियत नहीं रखती। आज की युवा पीढ़ी इस बात की अनदेखी कर रही है कि एक दिन उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार संभव है जैसा वह आज वृद्धों के साथ कर रही है। हमारे बुजुर्ग हमारे घर व परिवार की शान है। जिस घर में बड़े बुजुर्गों को मान दिया जाता है वह घर भरपूर और कुशल रहता है। बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमारे काम सफल होते हैं और हम उन्नति करते हैं। वे हमारे घर की बुनियाद हैं। यदि बुनियाद सकुशल होगी तो इमारत को बल और लाभ प्राप्त होगा। माता पिता बच्चों का पालन पोषण करते हैं। बच्चों की खुशी के लिए वे अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं। बच्चे उनकी आंखों के तारे होते हैं। वे अपने बच्चों के लिए ऊंचे ऊंचे अरमान रखते हैं और सपने सजाते हैं। वे अपना आराम त्याग करके बच्चों को आराम देते हैं, इसलिए वे पूज्य होते हैं। हमें उनका आदर करना चाहिए। बड़ी उम्र में शरीर कमजोर हो जाता है और बीमारियां घेर लेती हैं। ऐसे में बुजुर्गों को सहारा देना हमारा कर्तव्य है। हमें उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करके उन्हें मानसिक संतोष प्रदान करना चाहिए। बुजुर्ग शब्द दिमाग में आते ही उम्र व विचारों से परिपक्व व्यक्ति की छवि सामने आती है। बुजुर्ग अनुभवों का वह खजाना है जो हमें जीवन पथ के कठिन मोड़ पर उचित दिशा निर्देश करते हैं। परिवार के बुजुर्ग लोगों में नाना नानी दादा दादी माँ बाप सास ससुर आदि आते हैं। बुजुर्ग घर का मुखिया होता है। इस कारण वह बच्चों बहुओं बेटे बेटी को कोई गलत कार्य या बात करते हुए देखते हैं तो उन्हें सहन नहीं कर पाते हैं और उनके कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं, जिसे वे पसंद नहीं करते हैं। वे या तो उनकी बातों को अनदेखा कर देते हैं या उलट कर जवाब देते हैं। जिस बुजुर्ग ने अपनी परिवार रूपी बगिया के पौधों को अपने खून पसीने रूपी खाद से सींच कर पल्लवित किया है, उनके इस व्यवहार से उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। एक समय था जब बुजुर्ग को परिवार पर बोझ नहीं बल्कि मार्गदर्शक समझा जाता था। बुजुर्गों का जीवन अनुभवों से भरा पड़ा है। उन्होंने अपने जीवन में कई धूप छांव देखे हैं। जितना उनके अनुभवों का लाभ मिल सके लेना चाहिए। इस जीवन संध्या में उन्हें आदर व अपनेपन की जरूरत है। इनकी छत्र छाया से हमारी सभ्यता व संस्कृति जीवित रह सकती है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि तुम्हें कब क्या करना है यह बताना बुद्धि का काम है, पर कैसे करना है यह अनुभव ही बता सकता है। फल ना देगा ना सही, छांव तो देगा तुमको पेड़ बूढ़ा ही सही, आंगन में लगा रहने दो।
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे श्रीमती प्रियंका खरे की वार्ता, बुजुर्गों के प्रति हमारे दायित्व। आइए दोस्तों अब चलते हैं अगली चर्चा की ओर। श्रोताओं, बढ़ती उम्र अपने साथ अनुभव, परिपक्वता और जीवन का अमूल्य ज्ञान लेकर आती है, लेकिन इसी उम्र में कई लोग अकेलेपन, अवसाद, चिंता और उपेक्षा जैसी मानसिक समस्याओं का सामना भी करते हैं। ऐसे में परिवार और समाज की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। बुजुर्गों का अकेलापन केवल

शारीरिक रूप से अकेले रहने तक सीमित नहीं होता। कई बार परिवार के बीच रहकर भी यदि उनकी बात ना सुनी जाए तो उन्हें समय ना दिया जाए तो उनके विचारों को महत्व ना मिले तो वे स्वयं को अकेला महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में बच्चे नौकरी या पढ़ाई के कारण दूसरे शहरों या देशों में चले जाते हैं। ऐसे में माता पिता घर पर अकेले रह जाते हैं। धीरे धीरे ये अकेलापन मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद का कारण बन सकता है। कई बुजुर्गों की नींद प्रभावित होती है, भूख कम हो जाती है और जीवन के प्रति उत्साह भी घटने लगता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अच्छा मानसिक स्वास्थ्य केवल बीमारी का ना होना नहीं बल्कि खुश रहना, आत्मविश्वास बनाए रखना और दूसरों से जुड़े रहना भी है। यदि बुजुर्ग नियमित रूप से परिवार के साथ समय बिताएं, मित्रों से मिलें, सामाजिक गतिविधियों में भाग लें और अपनी पसंद के कार्य करें तो उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बना रह सकता है। परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वे रोज कुछ समय अपने बुजुर्गों के साथ बिताएं, उनकी बातें ध्यान से सुनें, उनकी सलाह लें और उन्हें ये महसूस कराएं कि वे परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। एक छोटी सी मुस्कान, अपनापन भरी बातचीत और सम्मान का व्यवहार उनके जीवन में नई ऊर्जा भर देता है। इसके अलावा नियमित सैर, हल्का व्यायाम, योग, ध्यान, संगीत सुनना, पुस्तकें पढ़ना, बागवानी करना या किसी सामाजिक संस्था से जुड़ना भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सामुदायिक केंद्रों और वरिष्ठ नागरिक क्लबों में भागीदारी से नए मित्र बनते हैं और जीवन में उत्साह बना रहता है। यदि किसी बुजुर्ग में लंबे समय तक उदासी, निराशा, चिड़चिड़ापन, याददाश्त में कमी या किसी भी काम में रुचि न रहने जैसे लक्षण दिखाई दें तो इसे सामान्य उम्र का प्रभाव मानकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। समय रहते चिकित्सक या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। हम सभी की जिम्मेदारी है कि अपने घर और समाज के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, स्नेह और अपनापन दें। आखिर जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे भविष्य को संवारने में लगा दिया, उन्हें जीवन के इस पड़ाव पर हमारा साथ और हमारा समय सबसे अधिक चाहिए। आइए हम संकल्प लें कि अपने बुजुर्गों को कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे, उनके साथ समय बिताएंगे, उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे और उनके मानसिक स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान रखेंगे जितना उनके शारीरिक स्वास्थ्य का। श्रोता, हमारे बुजुर्ग अपने नाती पोतों का संग पाकर बेहद खुश रहते हैं। उनके साथ खेलना, मस्ती करना, नौटंकी करना और उनको लोरी गाकर सुलाना उन्हें बेहद खुश रखता है। कुछ इस तरह से।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे एक फूल दो माली फिल्म का ये गीत मन्ना डे की आवाज में। प्रेम धवन के गीत को संगीतबद्ध किया था रवि ने। आइए दोस्तों अब चलते हैं विविध समाचारों की ओर। श्रोताओं अब बुढ़ापे में सेहत का राज सिर्फ कम खाना या प्रोटीन नहीं रहा। दुनिया के बड़े शोध संस्थानों की रिसर्च बताती है कि सही खान पान कोशिकाओं की मरम्मत और दिमाग की सुरक्षा तक करता है। आइए जाने ऐसे दो प्रभावी आहार पैटर्न। माइंड डाइट, ये भूलने की बीमारी के खतरे को कम करने में मददगार है। ये डाइट फार्मूला खासतौर पर दिमाग की सेहत के लिए मददगार है। ये अल्जाइमर जैसी भूलने की बीमारी को घटाने में लाभदायक हो सकता है। हालांकि डाइट के साथ नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, धूम्रपान से बचाव व बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल पर कंट्रोल भी जरूरी है। क्या खाएं? अपने भोजन में हफ्ते में कम से कम दो बार बेरी जैसे स्ट्रॉबेरी, जामुन, शहतूत और रोजाना हरी पत्तेदार सब्जियां व साबुत अनाज को शामिल करें। प्लांट रिच डाइट, ये पेट से आपकी इम्यूनिटी का स्तर बढ़ाने में सहायक होता है। ये डाइट सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि पेट के अच्छे बैक्टीरिया की विधिवत्ता बढ़ाने के लिए जो उम्र के साथ कम होने लगती है। अमेरिका की माइक्रोबायोम रिसर्च में पाया गया जो लोग हफ्ते में 30 या उससे ज्यादा अलग अलग पौधों से बने खाद्य पदार्थ खाते हैं उनके पेट के बैक्टीरिया स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि शरीर की 70% इम्यून कोशिकाएं पेट में ही होती हैं इसलिए इन्हें स्वस्थ रखना जरूरी है। एक जैसी दाल रोटी के बजाय ज्वार, बाजरा, रागी मिले आटे को अपनाएं। थाली में अलग अलग रंगों की सब्जियां शामिल करें। चलते हैं अगली खबर की ओर। श्रोताओं क्या बढ़ती उम्र में भी मन को जवान रखा जा सकता है? क्या सकारात्मक सोच सचमुच जीवन में फर्क ला सकती है? दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली प्रेरक पुस्तकों में शामिल द पावर ऑफ योर सब कॉन्सियस माइंड के लेखक जोसेफ मर्फी का मानना है कि अवचेतन मन एक ऐसे खजाने की तरह है जो व्यवहार, आत्मविश्वास और जीवन के अनुभवों को प्रभावित करता है। किताब में बताए गए मन की शक्ति के ऐसे ही तीन रहस्य जानिए। मनुष्य मानसिक रूप से पहले बूढ़ा होता है, शारीरिक रूप से बाद में। सीखने की इच्छा और भविष्य के लिए उत्साह बनाए रखने वाले लोग अक्सर अधिक संतुष्ट और सक्रिय

रहते हैं। दूसरा, आपका अवचेतन मन उन्हीं विचारों को मानता है जो बार बार सोचते हैं। यदि आप रोज सोचते हैं कि अब मेरी उम्र हो गई है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मन उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन यदि आप कहें मैं आज भी सीख सकता हूं, सक्रिय रह सकता हूं, तो मन नई ऊर्जा पैदा करने लगता है। तीसरा, आप मन में जो चित्र बनाते हैं, जीवन उसी दिशा में आगे बढ़ता है। खुद को स्वस्थ, आत्मनिर्भर, खुश देखकर सोचें। परिवार के साथ अच्छे समय, यात्रा, सेवा कार्य, किसी नए लक्ष्य की कल्पना करें। यही ये दृष्टिकोण आत्मविश्वास और जीवन के प्रति उत्साह बनाए रखने में मदद करेगा। दोस्तों, ये तो थे विविध समाचार। इसी के साथ आज का समय साक्षी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह, प्रस्तुतकर्ता रविन्द्र कुमार प्रजापति।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पत्रिका कार्यक्रम समय साक्षी। प्रस्तुतकर्ता थे रविन्द्र कुमार प्रजापति। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए श्रोताओं के सोशल मीडिया संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

0: श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपका ध्वनि मित्र संतोष ताम्रकार। स्वीकारिए प्यार भरा नमस्कार।
1: घर की अंबर डोले सबसे बड़ा सच है।

श्रोताओं, आपकी पसंद का ये पहला गीत हमने लिया था फिल्म चरस से। आवाजें थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी की। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का। सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक अपनी पसंद भेजी है, अपने संदेश हमारे पास भेजे हैं। ग्राम गोपी खिरिया, तहसील भांडेर, जिला दतिया, मध्य प्रदेश से पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं राहुल पाल, हरमोहन पाल, अंजना पाल, ज्योति बघेल, लक्ष्य बघेल और उनके परिवार वाले। ये पत्र आया है, संदेश भेजा है बोरखेड़ा पित्रामल, जिला उज्जैन से। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दीक्षा कुश और उनके परिवार वाले। ग्राम व पोस्ट बिरखेरा, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से पसंद किया है मणिराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल। ये पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं बांदा उत्तर प्रदेश से राज विक्रम खरे, विकास विक्रम खरे और श्रीमती मीना खरे। अगला नाम ये पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं पद्मा टॉकीज, नेपानगर, मध्य प्रदेश से। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति, सुरभि, अश्वनी, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। ये अगला नाम है भोपालगढ़, राजस्थान से पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं।

धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार ने। ये अगला नाम है बागपत उत्तर प्रदेश से, पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया। ये संदेश हमारे पास आया है ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से, पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर मोहम्मद, साकिब अलमास, मोइन छोटू, शंकरलाल, विनीता गंगराडे और मोहम्मद। इसके अलावा गांधीनगर गुजरात से पसंद किया है जेके परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष, दीपल, उर्वशी और उनके संगी साथी। ये संदेश हमें प्राप्त हुआ है नरगौड़ा छत्तीसगढ़ से, पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्रेम रूप का ये गीत। मधुर आवाजें थी लता मंगेशकर और सुरेश भाटकर की। गीतकार थे संतोष आनंद और संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, इस गीत के लिए हमारे पास संदेश जो प्राप्त हुए हैं वो इस प्रकार से हैं। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। ये संदेश हमें प्राप्त हुआ है ग्राम मामना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजूर, अंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब राम चबूतरा कालपी से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यस मंसूरी ने। ये संदेश हमारे पास आया है जनकपुरी सहारनपुर से। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो ने। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से पसंद किया है सोपान वसंतराव भोजने और पीएस नेवरकर ने। ये संदेश हमारे पास आया है दीवान रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर, काजल बड़वार, लखवीर, रानू, कृष्णा, श्रीमती छिंदो, प्रवीण, शीतल, नवीन, रंगीला, निशान, अनमोल, प्यारे और उनके समस्त परिवार वाले। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर एक और प्यारा सा गीत। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी छतरपुर से श्रोताओं के सोशल मीडिया संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद, और मैं हूं आपके साथ आपका मित्र संतोष ताम्रकार। तो आइए चलें आपकी अगली पसंद की ओर।